श्री गिरीश ने गाई संत मीराबाई की ये हिंदी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है संत चोखा मेळा की, जिसे गाया है जयश्री कुलकर्णी ने।

जय श्री कुलकर्णी ने गाई संत चोखामेळा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं पद्माकर थत्ते के स्वर में संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना।

संत एकनाथ महाराज की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी पद्माकर थट्टे के स्वर में। भक्ति संगीत का कार्यक्रम अभी आपने सुना, यह आकाशवाणी पुणे का निर्माण था जिसे आपने सुना रागम 24/7 DTH चैनल पर। सुनते रहिए भारतीय संगीत हर समय हर पल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग गुर्जरी तोड़ी में बांसुरी वादन. आज के कलाकार हैं सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं देवाशीष सरकार. तो लीजिए प्रस्तुत है राग गुर्जरी तोड़ी में बांसुरी वादन, कलाकार सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present Hindustani Instrumental Recitals. Listen to a flute recital in the rag Gurjari Todi. Our artist is Sudeep Kumar Chattopadhyay. Accompanying him on the tabla is Debashish Sarkar. Listen to rag Gurjari Todi on the flute. Our artist is Sudeep Kumar Chattopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग गुर्जरी तोड़ी में बांसुरी वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे देवाशीष सरकार। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग भाटियार में गिटार वादन। कलाकार हैं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं परिमल चक्रवर्ती। तो आइए सुनते हैं राग भाटियार में गिटार वादन। कलाकार पंडित देवाशीष भट्टाचार्य।
1: यू वर लिसनिंग टू अ फ्लूट रिसाइटल इन द राग गुर्जारी टोडी। आवर आर्टिस्ट वॉज सुदीप कुमार चट्टोपाध्याय। Accompanying him on the tabla was Debashish Sarkar. This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. Continuing the concert, we now present a guitar recital. Listen to the rag Bhatiyar on the guitar. Our artist is Pandit Debashish Bhattacharya. Accompanying him on the tabla is Parimal Chakraborty. Listen to the rag Bhatiyar on the guitar. Our artist is Pandit Debashish Bhattacharya.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भाटियार में गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे परिमल चक्रवर्ती। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज के कार्यक्रम में सुनते हैं वायलिन वादन। कलाकार है अतुल कुमार उपाध्याय। प्रारंभ में आपने वायलिन पर प्रस्तुत किया राग बैरागी भैरव सुनते हैं। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुतगत एक ताल और त्रिताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है माधव मोड़क। तो आइए सुनते हैं वायलिन पर राग बैरागी भैरव, कलाकार अतुल कुमार उपाध्याय।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अतुल कुमार उपाध्याय द्वारा प्रस्तुत वायलिन पर राग बैरागी भैरव। और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं वायलिन पर राग मधुवंती, कलाकार अतुल कुमार उपाध्याय। विलंबित गत 6 ताल में निबद्ध है और द्रुत गत 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर है माधव मोड़ो। तो आइए सुनते हैं वायलिन पर राग मधुवंती, कलाकार अतुल कुमार उपाध्याय।

श्रोताओं, अभी आपने सुना वायलिन पर राग मधुवंती। कलाकार थे अतुल कुमार उपाध्य। आपके साथ तबले पर थे माधव मोड़क। ये आकाशवाणी पुणे केंद्र की निर्मित थी रागम हर पल हर समय आपके साथ।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग मालकौंस। विलंबित और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है गुलाम सरवर ने।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ सारंगी रिसाइटल बाय कमाल सरवर साबरी। ही बिगिंस हिज रिसाइटल विद राग मालकौंस। द विलंबित एंड द्रुत गत आर सेट टू तीन ताल। कमाल सरवर साबरी हैज बीन अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर।

0: कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग रागेश्री मध्य लयगत झपताल में और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है गुलाम सरवर ने।
1: नाउ लिसन टू राग रागेश्री परफॉर्म बाय कमाल सरवर साबरी। द मध्य लय गत इज सेट टू झपताल एंड द द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल। इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर।

0: अभी आप कमाल सरवर साबरी का सारंगी पर बजाया राग रागेश्री सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी गुलाम सरवर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू राग रागेश्री ऑन द सारंगी बाय कमाल सरवर साबरी। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय गुलाम सरवर। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: श्रोताओं नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई ठुमरी मिश्र झिंझोटी राग में। साथ संगत है हारमोनियम पर अरविंद थत्ते, तबले पर चंद्रकांत कामत, सारंगी पर लतीफ अहमद खान। आइए सुनते हैं पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की गाई मिश्र झिंझोटी राग में ठुमरी।

अभी आपने पंडित गोविंद प्रसाद जयपुर वाले की मिश्र झिंझोटी राग में ठुमरी सुनी। सात संगत की थी, हारमोनियम पर अरविंद थत्ते, तबले पर चंद्रकांत कामत, सारंगी पर लतीफ अहमद खान। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सुनते हैं विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर की गाई ठुमरी राग जोगिया में, बोल है पिया के मिलन की आस।

अभी आपने विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर की गाई ठुमरी सुनी। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं विदुषी बेगम अख्तर की गाई हुई ठुमरी। बोल है कैसे बंसी बजाई रामा सुध विसराई। तबले पर साथ कर रहे हैं नाना मुड़े। हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर।

श्रोताओं, अभी अपने विदुषी बेगम अख्तर की गाई हुई ठुमरी सुनी। अब सुनेंगे पंडित भीमसेन जोशी की गाई हुई भैरवी ठुमरी। बोल है, रस के भरे तोरे नैना सावरिया, तबले पर साथ कर रहे नाना मुड़े, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वाला बलकर।

अभी अपने पंडित भीमसेन जोशी की गाई हुई भैरवी ठुमरी सुनी। तबले पर साथ की थी नाना मुड़े ने, हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर। रागम 24/7 DTH के लिए ये आकाशवाणी पुणे की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं रागम 24/7 DTH चैनल पर भारतीय संगीत हर पल हर समय।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग कौशिक कानाड़ा और राग भैरवी में वायलिन वादन. आज के कलाकार हैं इंद्रदीप घोष. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं तरुण रॉय. इंद्रदीप घोष अपने वायलिन वादन का आरंभ राग कौशिक कानाड़ा से कर रहे हैं. तो आइए सुनते हैं राग कौशिक कानाड़ा में

0: वायलिन वादन, कलाकार इंद्रदीप घोष.
1: दिस इज रागम 24/7 एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ वायलिन रिसाइटल इन द राग कौसी कन्नड़ा एंड द राग भैरवी by Indradeep Ghosh. Accompanying him on the tabla is Tarun Roy. Listen to Rag Kosi Kannada and Rag Bhairabi by Indradeep Ghosh.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग भैरवी में वायलिन वादन सुन रहे थे। आज कलाकार थे इंद्रदीप घोष। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे तरुण रॉय। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन राग कौसी कनाडा एंड राग भैरवी बाय इंद्रदीप घोष। Accompanying him on the tabla was Tarun Roy. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 anytime Indian music.

0: अब सुनिए संत्यागराज की रचना ई वसुधा, राग है सहाना, ताल है आदि।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद ई वसुधा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा सहाना सेट टू आदि तालम।

0: चिन्मया भगिनी अब प्रस्तुत कर रही हैं मां मव मीनाक्षी, वराली राग और मिश्र चापुताल में मुत्तुस्वामी दीक्षितर की रचना।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका फर्दर कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद मां मव मीनाक्षी, अ कॉम्पोजिशन ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितर इन रागा वराली सेट टू मिश्र चापुतालम।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं चिन्मया भगिनी, श्रीमती उमा और श्रीमती राधिका का गायन। आपके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंग पर श्री एन सुंदर।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर लिसनिंग टू अ कर्नाटिक क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका। दे आर अकंपनीड बाय श्रीमती श्रद्धा रविंद्र ऑन द वायलिन, श्री बी गणपति रामन ऑन द मृदंगम एंड श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंग।
0: कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं मोहनम राग और आदिताल में रचना नन्नू पालिम्पा, रचनाकार हैं संत त्यागराज।
1: चिन्मया सिस्टर्स श्रीमती उमा एंड श्रीमती राधिका कंटिन्यूज देयर कॉन्सर्ट विद नन्नू पालिम्पा, अ कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट त्यागराजा इन रागा मोहनम सेट टू आदितालम।

0: अभी आपने सुना तनिया वर्तनम। कलाकार थे मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर।
1: यू जस्ट हियर टू अ तनि आवर्तनम प्लेड ऑन द मृदंगम बाय श्री बी गणपति रामन एंड बाय श्री एन सुंदर ऑन मोरसिंह।
0: कार्यक्रम का समापन करते हुए चिन्मया भगिनी प्रस्तुत कर रही हैं जौनपुरी राग और आदिताल में पापनासम शिवन की रचना मुरुगनई बजी मन में।
1: Chinmaya sisters conclude their concert with Muruganai Bhaji Maname, a composition of Papanasam Sivan in Raga Jaunpuri set to Aditalam.

0: गायन आपके साथ संगत कर रहे थे वायलिन पर श्रीमती श्रद्धा रविंद्रन, मृदंगम पर श्री बी गणपति रामन तथा मोरसिंह पर श्री एन सुंदर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के चेन्नई केंद्र में रिकॉर्ड किया गया तथा आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: In tonight's national program of music, you just listened to a Carnatic classical vocal concert by Chinmaya sisters Srimati Uma and Srimati Radhika. They were accompanied by Srimati Shraddha Ravindran on violin, Sri B. Ganapati Raman on mridangam and Sri N. Sundar on morsing. With that, we come to the end of tonight's national program of music. This program was recorded at the studios of Akashwani Chennai and was broadcast from Akashwani Delhi.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद

अगली प्रस्तुति है कजरी। बोल हैं धीरे धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया हो। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज कजरी।

अब आप सुनेंगे दादरा मिश्र गारा, बोल हैं सुध बिसरत नाही। नाउ लिसन टू अ दादरा मिश्र गारा।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं नैना देवी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय नैना देवी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे ठुमरी भैरवी, बोल हैं हंस हंस गरबा लगाए। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स ठुमरी भैरवी।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार थी नैना देवी, संगत कलाकार थे तबले पर इस्माइल दद्दू खां और सारंगी पर सरदार खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। You were listening to Hindustani Light Classical Vocal Recital by Naina Devi. The accompaniment was provided by Ismail Daddo Khan on the tabla and Sardar Khan on the sarangi. This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन. कलाकार हैं कृष्णराम चौधरी. राग है बिलास खानी तोड़ी. विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to a Hindustani Shehnai recital by Krishnaram Chaudhary. The rendition commences with the rag Bilas Khani Todi.

इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे राग केदार। मध्य लयगत झपताल में निबद्ध है और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स राग केदार।

आप सुन रहे हैं शहनाई वादन, कलाकार हैं कृष्णाराम चौधरी। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णाराम चौधरी। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में शहनाई वादन। कलाकार थे कृष्णराम चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी शहनाई रिसाइटल बाय कृष्णराम चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग झिंझोटी में आलाप. विलंबित और द्रुत गतें, तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने.
2: This is a Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital in Rag Jinjoti by Rajiv Verma. First listen to Alap, followed by Vilambit Gat and Drut Gat, which is set to Teen Tal. He is accompanied by Prasun Chatterjee on Tabla.

0: अभी आप राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग झिझोटी सुन रहे थे और अब सुनिए राग नंद में आलाप विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है प्रसून चैटर्जी ने।
1: यू वर लिसनिंग टू राग झिझोटी बाय राजीव वर्मा। नाउ लिसन टू राग नंद आलाप फॉलोड बाय विलंबित एंड द्रुतगत इज सेट टू तीन ताल इज अकंपनीड बाय प्रसून चैटर्जी ऑन तबला।

0: अभी आप राजीव वर्मा का सितार पर बजाया राग नंद सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी प्रसून चटर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सितार रिसाइटल इन राग नंद बाय राजीव वर्मा। ही वाज अकंपनीड बाय प्रसून चटर्जी ऑन तबला। दिस प्रोग्राम इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत. प्रस्तुत है भक्ति संगीत. भक्ति संगीत कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनते हैं दिलराज कौर की गाई ये भक्ति रचना.

दिलराज कौर के स्वर में संत मीराबाई की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं एक गुजराती भक्ति रचना।

ईश्वर राठौड़ के स्वर में गुजराती भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं पद्मजा जोगलेकर के स्वर में ये मराठी भक्ति रचना।

पद्मजा जोगड़ेकर के स्वर में संत ज्ञानेश्वर द्वारा रचित ये मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं काकुली मुखर्जी के स्वर में संत तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना।

काकोली मुखर्जी के स्वर में संत तुलसीदास जी की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। अब सुनते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में संत तुकाराम महाराज रचित ये मराठी भक्ति रचना।

सुरेश वाडकर के स्वर में संत तुकाराम द्वारा रचित ये मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं शुभा जोशी के स्वर में संत धर्मदास की ये भक्ति रचना।

शुभा जोशी के स्वर में संत धर्मदास की ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं उत्तरा केळकर के स्वर में विजया जहागीरदार की ये मराठी भक्ति रचना।

ऐसा कहकर के स्वर में ये मराठी भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं संत मीराबाई की ये हिंदी भक्ति रचना अनुपमा रॉय के स्वर में।